अरे चलिंग सांखन लाजे चना तेरे हम देखो ना जो चर चिग तंजु वो चिग चलियो ना दा चुका चिग चिंग दे रहा जो ता गया दा गया दा चुका ना चितंग दम जगे ते चंग जो आर्कन दा तंजु दा तंग दा नाम दा ला सुकंदर हाचंग के जो जो ने ते तंग हान ता यंग आ तो चंग मार न्याम जब चल गोसा जी यो नो आ यंग जो चार चल ला सुकंदर चोनी ना रा यंग बाप तंग जे मंग सो जो ने दम गो तंग चंद रे ला तना जो कार संग किंग रे का वार कंदे चोनी ना रा रंग संग संग ने सो सो ने चोनी ना कर के चार ला सुकंदर

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tintu Janma, Ninib, Dingatana, Malinga, Warkum, Tonina, Ying, Tandaga, Tachertunga, Tundola Zunga, Karma, Tundaka, Warkum, the Chang Lamga, Indaran, the Sajin, and the Tandaran Lamda, Shisu Shakun, Chanda, Yanzi, Mangayoke, Tandam Dola Zunga, Tatuan, Josu Sajin, and Mayanga, Warkum, the Yang, the Chanachaku, Warkum, the Sajin, and the Tatu Janma, Ninib, and the Chakan is on that, and Goloku, Warkum, the Galam, Tundira. The Chinga Tan and Hasigo are the Chundan Mishan, the Hutunitaka work, and then Yogur work, and the Tajan Muni, then Gatandi, Tatakaga work, and the Tonkurzon Tonara, Gomi Yaganjosuka, Gomi Yaga in the Tunkalapsi, Osuga work, and then Sonina, Tinker and the Shundi, Kudamsi Joni, then Nansandari, the Chinga Tan Dani Hara, Tasuna, Tandi, Yaramula Kandanita, Yanam Ni, then Gatakunjan, Takaga Machi Samba, also in the Sajin, the Tama, and Kudam the Shijuasa, okay.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
0: अरे चलेंगे संख्या ताजे तो ना जो तेरे घासी करूं ये रंगशंग के लाम चिकने चंदे चोनी ना तांगे कोनी ओटो सी बात तेरे डाल जाले तो ना जो लाम तुम को ला कंडे चोनी ना ता ता तेरे उन चोनी ना लाम तो जो कुदम सी जोंग ना ना दमों का हंग चंदे यो कम तीसरे ता चुपर का गिपर ता शुंदर यामरन जोगर ता जाब्जोरा तंत्र की �